तपाई अपना साका हाल बुरी क्यों कालिए मंदा मूला की चीज दे लंबी नजर निहाली है जो साहिब नाल नहारिए ते वे हप्पा सा टालिए किचलाए ऊपर कालिए किचलाए ऊपर कालिए।

लगे चाकरी जे चले कसमे पाए, गुरमत किसनु अगले ओ बजो पे दुना खाए, कसमे करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए, बजो गवाए अगला मोह मोह पाना खाए, जिसदा दिता खावना तिस कहिए सबास, नानक हुकुम ना चले नाल खसम चले अरदास।

0: एक नहीं दाता पिस्ते जो पाई है नानक सक्रमात साहिब तुठे जो मिले महला दूजा
1: एक नहीं चाकरी जितबो खसम न जाए नानक सेवक कंडी है जिसे ती खसम समाए।

आपे भांडे साजना पे पूर्ण दे, एक ने दुध समाई है कुचले रैन चढ़े, एक ने हाली पैसवन कुपरैन खड़े।

एक ओंकार सत नाम कर्ता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चिह्न अर वर्ण जात अर पात नहिं जिह रूप रंग अर रेख पेख कोउ कह ना सकत किह अचल मूरत अनपौ प्रकाश अमित तोज कहि जह कोट इंद्र इंद्राण साहि सहाण गण जह त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत त्वय सर्व नाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत जग और न यहे महातम मैं अवतार उजागरे आन की आओ तिनके दुख कोटिक दूर गए मथुरा जिने अमृत नाम पियाओ एह पद्धत ते मत चूक है रे मान भेद विभेद न जान बियाओ पर तछ हृदय गुर अर्जुन कै हर पूरन ब्रह्म निवास लियाओ। सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया तिस मोहन लाल प्यारे हाँ फिराओ खोजंतिया तिस दस प्यारे सिर धरी उतारे एक पोरी दर्शन दीजै नैन हमारे प्रिय रंग रंगारे एक तिल भी ना तीरीजै प्रभ स्यों मन लीना ज्यों जल मीना चात्रिक जिवैत संतिया जन नानक गुर पूरा पाया सगली तिखा बुझंतिया सतगुर आयो शरण तुहारी मिले सुख नाम हर सोबा चिंता लाहे हमारी। एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणाई अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम आपने तन मन हुए निहाल जा गुर देखा सामने सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुवाए दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दी दूर अर सहो कुर सहो चटिया तुद डिठे सच्चे पात सा माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पात सा हो
ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹੋ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੋ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਿ ਸਾਹੋ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹੋ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੋ ਸਤ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਲੋਕਾਂ ਰਾਜ ਕਪਟੰ ਰੂਪ ਕਪਟੰ ਧਨ ਕਪਟੰ ਕੋਲ ਗਰਬਤ ਹੈ ਸੰਚੰਤ ਬਿਖਿਆ ਛਲੰ ਛਿਦਰੰ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਾਰ ਸੰਗ ਨ ਚਾਲਤੇ ਰਾਜ ਕਪਟੰ ਰੂਪ ਕਪਟੰ ਧਨ ਕਪਟੰ ਕੋਲ ਗਰਬਤ ਹੈ ਸੰਚੰਤ ਬਿਖਿਆ ਛਲੰ ਛਿਦਰੰ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਸੰਗ ਨ ਚਾਲਤੇ ਪੇ ਖੰਦੜੋ ਕੀ ਭੁੱਲ ਤੁਮਾ ਦਿਸਮ ਸੋਹਣਾ ਅੱਡ ਨਾ ਲਹੰਦੜ ਮੁੱਲਾ

रंग प्रंग नेक न जपन करत बाजिया अंदर जियो सब कुछ जान ला सब किस तेरे वास तेरा कर पला तेरे खर नंद वदाई तुद खर मान महता तेज अपना आप जर।

माया मोह परम पै पूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत, तेहें मिलंत जम त्रास मिटाए।

गुरु रामदास राखो शरणाई, गुरु रामदास राखो शरणाई। निमाणियों के मां, निताणियों के तान,

पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दुधाई दाया खेले सगल जगत चंगी आईया बुरी आईया वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ती आया गए मसकत का नानक ते मुखी उजले केती।

0: गुरु
1: औड़ी वड्डी घुमडाया पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किश जान ला सब किश तेरे बस।

खेले सगल जगत। चंगियाँ बुरियाँ वाच धर्म हदूर, करमी आपू अपनी के नेड़े के दूर। जिनी नाम त्याया गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

पौड़ी बड़ी हुवड़ पार तेरा मर्तबा रंग परंग नेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब की जान ला सब की तेरे वस तेरा कर पला तेरा कर नंद वदाई तुद कर मान महता तेजे अपना आप जारी सर्व कला पर पूर दे।

राग आसा महला चौथा। सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगम अगम अपार। सब त्यावह सब त्यावह तुद जी, हर सच्चे सिरजनहार। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातार। हर त्याव हो संत हो जी, सब दुख विसारन हार। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचार। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समान। एक दाते एक भेखारी जी, सब तेरे चोज विडान। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हों तुद बिन अवर ना जान। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख बखाण। जो सेवह तुद जी, जन नानक तिन कुरबान। हर त्यावह तुद जी, से जन जुग मह सुखवासी। से मुक्त भए जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फासी। जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी, तिन का भौ सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंत। तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनक अनेक अनंत। तेरी अनक करह हर पूजा जी, तप तप है जप है बेअंत। तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमरत शास्त्र जी, कर किरिया खट कर्म करंत। से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंत। तू आदि पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड़ अवर ना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू निःचल करता सोई। तुद आपे भावै सोई वरतै जी, तू आपे करहै सो होई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जान होई। आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैडा साई, जो तो भावै सोई थीसी। जो तू देहे सोई हो पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनो कृपा करहै तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल, बिजोग मिल बिछुड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना एह सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख बखाने। जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेखह जानह सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला। तेत सर्वरड़ भई ले निवासा, पानी पावक तिन्ह किया। पंक जो मोह पग नहीं चाले, हम देखा तह डूबियले। मन एक न चेतस मूढ़ मन, हर विसरत तेरे गुण गलिया रहाओ। ना हो जति सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुगदा जन्म भया। प्रणवत नानक तिन की सरना, जिन तू नाही विसरिया।
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤਿਰ ਕਿਤ ਨ ਕਾਮ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨ ਕੈ ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ ਰਹਾਉ।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह। पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपई। हमरी करो हाथ द रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तव चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपार। हमरे दुष्ट सवै तुम कावहो, आप हाथ दे मोहे बचावहो। सुखी वसै मोरो परिवार, सेवक सिख सवै करतार। मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब बैरन को आज संघरिए। पूरन होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें शाड कोई अवर न त्याऊं, जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिय है, चुन चुन सत्र हमारे मारिय है। आप हाथ दे मुझे उवरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जो करियो रक्षा। राख लिहो मोहे राखण हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप धरा, काल पाए शिव जू अवतर। काल पाए कर विसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जक्षण उपजायो। आद अंत एक अवतार, सोई गुरु समझ यहो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मो बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर यस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। सांतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने। जब उद करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपार। जब आ करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। जेते वदन श्रेष्ठ सब तार, आप अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनमानत, महामूढ़ कश भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, किह बिद सजा प्रथम संसार। एक रूप अनूप स्वरूप, रंक भयो राव कही भूप। आंडज जेरज सेतज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमट भयो शंकर अकैठा। सिगरी श्रेष्ठ दिखाई अचंपव, आदि जुगाद स्वरूप सुजंपव। आव रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दोस्त जिते उठवाते उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तव शरणी परे, तिनके दोस्त दुखत हुए मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट नह आय है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काल।
कृपा दृष्ट तन जाहि निहार हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शह स्व सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांसते ताहि उबारा।

सवैया पाए गहे जब ते तुम रे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक न माने ओ सिमरत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कहें हम एक न जाने ओ श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहे ओ

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर तां पाया सहज सेती मन बजियां बाधाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां, शब्दों तां गावो हरि केरा मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया, ये मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारण। अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारण, सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनहु बसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नाहीं घर तेरै, घर तां तेरै सब किश है जिस देहे सो पावै। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावै, नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाहीं घर तेरै, साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइयां। कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइयां। सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो जिस दियां इह वडियाइयां। कह नानक सुनहो संत हो शब्द धरहो प्यारो, साच

ज्यों जन हो त्यों राख, हर प्रभ तेरिया केते गनो असंख, आव गण मेरिया असंख अवगण खते फेरे, नेत परत सद भूलिए, मोह मगन बिकराल माया, तो पर सादी भूलिए, लोक करत बिकार बिखड़े, प्रव नेर हों ते नेरिया, बिनवंत नानक दया तार हो, काड पव जल फेरिया, असी खते बहुत कमाव दे, अंत न पारावार, हर किरपा करके बख्श लै हो, हों पापी बड़ गुन है गार, बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कह सेवक जन माने, परतख गुरु निसतारे, अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी, जलन बुझी शीतल होए मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जियो, दर्शन प्यासी दिन सरात, चित बहु आनंदिन नीत, खोल कपट गुर मेलिया, नानक हर संग मीत, सुख टल गुर सेविए, एहन ससहज सुभाय, दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरण दुख जाय, होए सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों चटी, तुद दिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी, सजन सचा पातशाह सिर सांदे, जिस पास बैठियां सोही है, सबनांदा विसाह, सजन सचा पातशाह सिर सांदे।

देख कर निर्वाण जानत दूर तुम है प्रभ नीर। ओत ताक ओत ते ओत पीख आवे लोभी फेर रहाओ। जाब लग तुटे नाही मन परम तब लग मुक्त न कोई। कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई। जाब लग तुटे नाही मन परम तब लग मुक्त न कोई। कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत शाड बिखै बिख खाई। माया मोह परम पै भूले, सुत धारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरनाई। सो कहो टल गुर सेविया, अहनस सहज दर्शन परसिया। गुरु कै जन्म मरण दुख होवै सिफत खसमदी, नूर अरसह कुरसह। तुद डिठे सच्चे पात सहामल, जन्म जन्म दी सजन सच्चा पात साह। सिर सहांदा जिस पास बैठिया, सोही है सब नांदा। सजन सच्चा पात साहो, सिर सहांदा जिस पास बैठिया, सोही है सब नांदा वेसाहो। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, तनासरी मोहल्ला पंजवा। औखी घड़ी ना देखण देई, अपना बिरद संभाले। हाथ दे राखै अपने को, सास सास प्रतपाले। औखी घड़ी ना देखण देई, अपना बिरद संभाले। हाथ दे राखै अपने को, सास सास प्रतपाले। प्रभु से

मन बिलास पे साहिब के, उचरज देख बड़ाई, हर सिमर सिमर आनंद कर नानक, प्रभ पूरन पैज रखाई। मन बिलास पे साहिब के, अचरज देख बड़ाई, हर सिमर सिमर आनंद कर नानक।

संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख

ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवै अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरप्रसाद आसा महला पहला वार श्लोकां नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे ढूंढे असरा जे की तुनी श्लोक महला पहला बल

सब जग चलन हार, कूड़ मिठा कूड़ माखियो कूड़ डोबे पूर, नानक वखाने बेनती तुद बाज कूड़ो कूड़।

0: जात में जोत, जोत में जाता, कलकला भरपूर है। तू सच्चा साहिब सिरस वाले हो, जिनकी तीसो पार पया, कहो नानक करते किया बाता, जो किछ करना सो कर रहे महला दूजा।
1: जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है, खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है, सर्व शब्दं एक शब्दं जे कव जाने पे, नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला दूजा। एक कृष्णं सर्व देवा देव देवाता आत्मा, आत्मा वासुदेव सजे कौ जाने पे, ओ नानक ताका दास है सोई निरंजन।

0: जाकी दृष्टा चल ठान बिमल बुद्ध स्थान पहर सील स्नहो सकत बेदार कहो कीरत कल सहार सपत दीप मजार लहना जगतर गोर पर समरार दृष्ट धरत तम हरण दहने अग पाप पर नासन शब्द सूर बलवंत काम अर क्रोध बिनासन लोभ मोह वस करण शरण जाचक प्रत पालन आत्मरत संग रहन कहन अमृत कल ढालन सतगुरु कल सतगुर तिलक सत लागे सो पै तरै गुर जगत फिर नसी अंगरों राज जोग लहना करै।
1: सदा अकल लिव रहै करण शिक्षा चारै दुर्म स्पूर जो निवै खवे कस विमल विचारै एह तत् जान्यो सर्वगत लख बिडाणी सहज भय संचयो किरन मत कल बाणी गुरगम प्रमाण तै पायो सत संतोख साज लयो गुर परस्यो हर्ष मुलवे जन दर्शन लैना पयो मन विसास पायो गहर गोदर दियो गर नास्ता नठ्यो अमे अंतर्गत पियो रिद विगास जाग्यो लख कल तरी जुगंतर सतगुरु सहज समाध रवयो समान निरंतर उधारो चित दारि दहरन बिखंते कल मातरसन सदरंग सहज कल उचरै जस जंप लहन रसन।
2: नाम अख नाम आधार अर नाम समाध सुख सदा।

अमै दृष्टि शुभ कर हरे अग पाप सकल मल, काम क्रोध अर लोभ मोह वश कर सब बल, सदा सुख मन वसा

0: तोहे बन आवे।
1: गुर ज्ञान और ध्यान तत् सिंह तत् मिलावे, सच सच जानिए इक चित लिवलावे। काम क्रोध वस करे पवन उडंत न तावे, निरंकार कै वसै देश हुकम बुझ।

पाप करे कर मुकर पावे, पेख कर निर्वाण जतन कर मानुख डहकावे। ओहो अंतर जामी जान पाप करे कर मुकर पावे, पेख कर निर्वाण जानत दूर तुम्हे प्रभ नेर। उत तक उत ते उत पेखा

जब लग तुटा नाही मन परमा, तब लग मुक्त ना कोई, कहो नानक दयाल स्वामी, संत भगत जन सोई, जब लग तुटा नाही मन परमा, तब लग मुक्त ना कोई, कहो नानक दयाल स्वामी।

साहिब होए दयाल कृपा करे ता साहिकार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसने हुक्म मनाए सी हुक्म मन्या होए प्रवान ता खसमे का महल पाए सी खसमे भावे सो करे मनु चलिया सो फल पाए सी ता दरगह पैंदा जाए सी ता दरगह पैंदा जाए सी।

आवे, चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचे आरियायत, देग तेग फतहे बिरद की पैज, पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहाय।

0: तै जब माली तान मलेसा खाई अंतर पूजा पणिक दे संजम तुरका पाई छोड़ी ले पखंडा नाम ले जाय तरंदा महला पहला
1: मानस खाने करहने वा छुरी वगाय तिन गलताग तिन कर ब्राह्मण।

0: जे मोहगा कर मोहे कर मोहे पितरी दे अगे वसे आणिए पितरी चोर करे वडिए हाथ द लाल के मुसफिए करे नानक अगे सो मिले जे खटे काले दे महला पहला
1: ज्यों जोरु सिरनावनी आवे बारो बार जूठे जूठा मुख वसै नित नित होए खुआर सुचे एह न आखिए बहन जे पिंडा धोए सुचे सेई नानका जिन मन वसिया सोए।